आप कराए साक्षी फिर आप कराए मार इतना गली जंजीरिया एक तुरे चले बिसेयार आप कराए करे आप हो कैसे हो करी पुकार नान करदा जिंदगी आ फिर तस्वीर करनी सा।

आवे। चित आवन का सदका सर्व सुख होवे। जहां जहां खालसा जी साहिब तहां तहां रचे आरे आयत। देग तेग फतहे बिरद की पैज, पंथ की जीत, श्री

साधन से धैया तुल धानी के तुझैया धूम तार को तरैया ध्यान ताको सदा लाइया आओ के बढ़िया।

गए मशक्कत काल, नानक ते मुखे उजले केती छुटे ना। वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह।

0: भगवन्ना
1: तुमरी शरण तुम्हारी आसा तुम ही सजन सुहेल राखो राखण हार दयाला।

रंग प्रंग अनेक न जापन करतबा जिया अंदर जियो सब कुछ जान ला सब कुछ तेरा वस तेरा कर भला तेरा कर अन

पौड़ी वड्डी होंडा पार तेरा मर्तबा, रंग परंगना नेक ना जापन करतबा, जिया अंदर जियो सब कुछ जान ला, सब किश तेरे वस तेरा कर पला, तेरे कर रंद वधाई तुद कर, माण महता तेज अपना आप जर, सर्व कला भरपूर दिसै जत कथा, नानक दासन दास तुद आ गए बिन बता, सलोक पवन गुरु पाणी पिता, माता तरत महत देव सुरात दुई दाई दाया, खिले सगल जगत चंगे आया बुरे आया, वाचे धर्म हदू करमी आपो आपनी, के नेड़े के दूर जिनी नाम ते आया, गैम शक्त का नानक ते मुख उजले, केती छुट्टी ना जिनी नाम ते आया, गैम शक्त का नानक ते मुख उजले, केती छुट्टी ना। वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह।

सोहे बंक द्वार सगला बनहरा मेरी सेजड़ी आडंबर बनया मन आनंद पया रब्यावत सुनया।

एक ओंकार श्री वाहे गुरु जी की फतेह। पातशाही दसवीं कबियो बाच बेनती चौपाई। हमरी करो हाथ दै रक्षा, पूरन होए चित्त की इच्छा। तब चरणन मन रह हमारा, अपना जान करो प्रतिपारा। हमरे दुष्ट सब तुम काव हो, आप हाथ दै मोहे बचाव हो। सुखी बसै मोरो परवारा, सेवक सिख सब करतारा। मोर अच्छा निज कर दै करिए, सब बैरन कौ आज संगरिए। पूरन होए हमारी आशा, तोर भजन की रह प्यासा। तुम है शाड़ कोई अवर न त्याऊं, जो बर चाहूं सो तुम ते पाऊं। सेवक सिख हमारे तारी है, चुन चुन सत्रो हमारे मारी है। आप हाथ दै मुझे उबरिए, मरण काल का त्रास निवरिए। हु जो सदा हमारे पच्छा, श्री अस तुझ जू करिय हो रक्षा। राख ले हो मोह राखन हारे, साहेब संत सहाय प्यारे। दीन बंद दुष्टन के हंता, तुम हो पुरी चतर दस कंता। काल पाए ब्रह्मा बप तरा, काल पाए शिव जू अवतरा। काल पाए कर बिसन प्रकाशा, सकल काल का की आत्मासा। जवन काल जोगी शिव कियो, वेद राज ब्रह्मा जू थियो। जवन काल सब लोक सवारा, नमस्कार है ताहे हमारा। जवन काल सब जगत बनायो, देव दैत जशन उपजायो। आदि अंत एक अवतारा, सोई गुरु समझिया हो हमारा। नमस्कार तिस ही को हमारी, सकल प्रजा जिन आप सवारी। सेवकन को सब गुण सुख दियो, सत्रन को पल मो बद्ध कियो। काट काट की अंतर की जानत, पले बुरे की पीर पशानत। चीटी ते कुंचर अस्थूला, सब पर कृपा दृष्ट कर फूला। संतन दुख पाए ते दुखी, सुख पाए साधन के सुखी। एक एक की पीर पछाने, काट काट के पट पट की जाने। जब उद करख करा कर तारा, प्रजा तरत तब देह अपारा। जब आ करख करत हो कबहू, तुम मैं मिलत देह तार सब हूँ। जेते बदन सृष्ट सब तारे, आप आपनी बूझ उचारे। तुम सब ही ते रहत निरालम, जानत भेद भेद अर आलम। निरंकार निर्विकार निर्लंब, आदि अनिल अनादि असंभ।

जानत महामूढ़ कछ भेद न जानत। महादेव कौ कहत सदा सेवो निरंकार का चीनत नह पेव। आप आपनी बुद्ध है जेती बरनत पिन पिन तोहे तेती। तुमरा लखा न जाए पसारा केह बिद सजा प्रथम संसारा। एक रूप अनूप सरूपा रंक पयो राव कही पूपा। अंडज जेरज सेतज कीनी उत पुज खान बहुरे रच दीनी। कहूँ फूल राजा है बैठा कहूँ सिमट पयो संकर इकैठा। सिगरी सृष्ट दिखाए अचंभव आदि जुगादि स्वरूप स्वयं भव। अब रक्षा मेरी तुम करो सिख उबार असिख संगर हो। दुष्ट जिते उठवत उत्पाता सकल मलेश करो रण काता। जे अस तुझ तव सरनी परे तिनके दुष्ट दुखित होवै मरे। पुरख जमन पग परे तिहारे तिनके तुम संकट सब टारे। जो कल को एक बार ते है ताके काल निकट नह है। रक्षा होइ ताहि सब काला दुष्ट अरिष्ट टरै तत्काला। कृपा दृष्ट तन जाहि निहर हो ताके ताप तनक मह हर हो। रिद्ध सिद्ध कर्मो सब होई दुष्ट शाह श्वै सकै न कोई। एक बार जिन तुम्हें संभारा काल फास ते ताहे उबारा। जिन नार नाम तिहारो कहा दारिद दुष्ट।

सवैया पाई गहे जब ते तुमरे तब ते को आँख तरे नहीं आने ओ राम रहीम पुराण कुरान अनेक कह मत एक न माने ओ सिमृत शास्त्र वेद सब बहु भेद कह हम एक न जाने ओ श्री असपान कृपा तुमरी कर मैं।

गुरु गोविंद गोविंद गुर गुर पूरन नारायण है, गुर दयाल समरथ गुर, गुर नानक पतत उदारण है। पाओ जल बिखम असगाह, गोर बोहित है तारियम, नानक पूर करम सतगुर चरणी लग्या। सतगुर नानक देओ है, परमेश्वर सोई, गुर अंगद गुर अंग ते, ज्योति ज्योत समोई। अमरा पद गुर अंगद हो, होए जान जनोई। गुर अमरह रामदास गुर, अमृत रस पोई। रामदासह अर्जन गुरु, गुर शब्द सथोई। हर गोविंद गुर अर्जन हो, गुर गोविंद होई। गुरमुख सुख फल परम रस, सत संग अलोई।

जना हों आदि पुरख आदेश कराया सुजै सोज न लुकै लुकाया सुजै सोज न लुकै लुकाया सो कहौ टल गोर सेवियै अहनस सहज सुभाए दर्शन परसे ऐ गुरु कै जन्म मरण दुख जाए होवै सिफत खसम दी नूर अर सहु को।

हर रसक रसक गुण गाया, प्रभ काटिया जम का फासा, मन पूरन होई आसा, जह पेखा तह सोई, हर प्रभ बिन अवर न कोई।